0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओं, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश

0: मामला है मटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने. उन्होंने लिखा है, नमस्कार. जब भी अगस्त का महीना आता है, हमारा मन आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायास ही नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है. आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया. समयानुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है. हम इसके कायल हैं. आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार. आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए. अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया. करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं. तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की. तो आइए जानते हैं. हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे. हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों. शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था. फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है. इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए. हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराड़ा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराड़ा रोज क्यू शिराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी. ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो गया. और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने वाले श्री सत्यानंद स्टोक्स किस देश के, किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टोक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर के निवासी थे. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए. और अब सुनिए आज का प्रश्न. प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की. और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद.
1: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं आपका मित्र अजीत. तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में. हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा. तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं. हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन. तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर. तो आपके बारे बता दूं कि आप NCERT के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं. तो डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए. तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है. दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
2: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है. जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है. जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है. जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों, लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है. जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री, पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
1: बालक बालिका हो सकते हैं.
2: हाँ, बिल्कुल.

0: इसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं. अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है.
1: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में. इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
0: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की, और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में. तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है जितने भी हमारे समाज में स्त्री पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर, उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए. और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
1: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे.
0: हाँ,
1: आप ये कहना चाहते
0: जी,
1: हैं
0: जरूर.
1: जी, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे. तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की क्या भूमिका है?
0: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में. अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है
1: जी.
0: और इसी के चलते एनसीईआरटी भी इसके सालगिरह को मना रहा है
1: जी.
0: जैसा कि हम देख सकते हैं. और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं
1: जी,
0: उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है
1: जी.
0: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके. और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके.
1: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
0: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी
1: जी.
0: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो
1: या
0: लोग
1: तो वंचित वर्ग भी कह
0: वंचित
1: सकते हैं,
0: लोग
1: जी,
0: जो हैं
1: जी.
0: तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर. दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि SC ST OBC और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं. इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं. कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से. तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें,
1: उन सबको शामिल करती
0: जी,
1: है
0: जी. तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है. हमारी जो लड़कियां हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांगजनों में भी हमारी बहुत सारी लड़कियां होती हैं. तो कहीं ना कहीं SCDGs की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है. अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है हमारी जो लड़कियां हैं,
1: ड्रॉप आउट
0: रेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई.
1: किनमें? लड़कों की संख्या में या लड़कियों की?
0: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों की जो ड्रॉप आउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है
1: जी.
0: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सके, इन पर काम कर सके, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं.
1: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, अब हम ये जानना चाहेंगे विशेष करके श्रोताओं की ओर से, मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या क्या है?
0: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते हैं
1: सुरक्षित
0: बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
1: जी,
0: वो सबको मिले.
1: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की, तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
0: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर

0: सर में। कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है,
1: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: बच्चियों का,
1: जी
0: लड़कियों का।
1: हाँ
0: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं
1: जी
0: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सकें,
1: आवास की सुविधाएं नहीं होती हैं।
0: आवास की सुविधाएं जो हैं वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है,
1: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हों,
0: उपलब्ध हों।
1: आप ये कहना चाहती
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: जी
0: तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं,
1: हाँ
0: तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBVs भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सकें। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे KGBVs हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।
1: जी
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसे में स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है।
1: जी
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम, ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है,
1: जी
0: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की।
1: जी
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की,
1: जी
0: जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC ST
1: आदिवासी
0: OBC
1: लोग, जनजातीय
0: माइनॉरिटी,
1: लोग।
0: जनजातीय लोग, है ना। तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी टेक्स्ट बुक में इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा आया कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है,
0: जी
1: इसका अर्थ शायद ये है।
0: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है। जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं। बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है।
1: जी
0: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके।
1: जी
0: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1: जी
0: है
1: जी
0: उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है।
1: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि
0: और
1: समाज में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है
0: जी
1: तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको
0: जी
1: कम मिले,
0: जी
1: इस तरह की बातें होती थी पहले।
0: या हाँ,
1: जी
0: तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है,
1: जी
0: लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है
1: हाँ
0: तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं।
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है। तो

0: कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है।
1: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई, और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे।
0: जी
1: तो अब आते हैं एनसीईआरटी पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग?
0: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज।
1: जी।
0: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया।
1: जी।
0: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित ना रखें।
1: जी।
0: जो जेंडर का अर्थ था वो सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था, लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना
1: जबकि
0: है।
1: जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता है।
0: जेंडर से अर्थ, बिल्कुल सही कहा आपने, जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना,
1: जी,
0: किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है। और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह हैं, उनको भी शामिल किया गया है।
1: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं, कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें कि दो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता के जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना,
1: जी,
0: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है। दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सकें।
1: रूढ़िवादिता, जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे?
0: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं, महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं।
1: जी।
0: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना।
1: जी।
0: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं।
1: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी, अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं।
0: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें, उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें। जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
1: हाँ, पायलट्स के रूप में इत्यादि,
0: हाँ,
1: है ना? जी
0: जी
1: जी।
0: तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली,
1: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी
0: उनकी
1: रही,
0: बहुत ज्यादा
1: सारे राष्ट्र में इसकी चर्चा है।
0: हाँ, जी। तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को,
1: एक अलग छवि बनी,
0: अलग छवि जो है उनकी बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं, जिसको कि भाषा के रूप में, अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है।
1: हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है,
0: एक पुरुष है। तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,

0: चेयरपर्सन,
1: विच इज अ
0: जी हाँ.
1: न्यूट्रल वर्ड, तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
0: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, हम जानना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है
1: जी,
0: जी.
1: बहुत जरूरी है ये देखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में,
0: जी.
1: अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं। तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता
0: जी
1: है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो
0: हो
1: सकता
0: सकता है,
1: है
0: बिल्कुल हो सकता
1: ना।
0: है जी.
1: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
0: न्यूट्रल वर्ड
1: बट
0: है जी.
1: एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
0: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता, कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यावहारिक सलाह आप देना चाहते हैं, या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं, जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर

0: शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
1: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता, कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यावहारिक सलाह आप देना चाहते हैं, या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं, जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
0: जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे एक छात्र जो हैं खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी।
1: जी
0: इसके भीतर सबसे पहले, अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए
1: जी
0: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले
1: और
0: सकें।
1: दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो कि हम एक साथ
0: समानता,
1: बैठ सकते हैं।
0: जी।
1: जी
0: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
1: और खाना
0: और
1: बनाने के लिए
0: खाना
1: महिला।
0: बनाने के लिए लड़कियों को करें,
1: जी
0: या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़ाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए।
1: जी
0: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें
1: जी
0: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो हैं उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सकें, कि जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा।
1: जेंडर न्यूट्रल भाषा, यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
0: जी हाँ,
1: जी हाँ
0: तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपने कक्षा में देखा है, कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग, इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ, तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते
1: हाँ,
0: हैं, जो
1: विद्यार्थियों
0: कि
1: कह
0: एक
1: सकते हैं,
0: न्यूट्रल शब्द भी है,
1: शिक्षार्थियों कह सकते हैं।
0: शिक्षार्थियों भी कह
1: जी
0: सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: जी हाँ
0: जी, कई बार क्या होता है, ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं,
1: जी
0: तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहां लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है,
1: जी
0: तो बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए।
1: जी
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा
1: यस
0: होगा कि
1: जी
0: नर्स का जो, जैसे ही हम सुनते हैं इस
1: नर्स
0: प्रोफेशन
1: की
0: के
1: जो
0: बारे में,
1: छवि है।
0: हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें, हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर हॉस्टेस की जो छवि है
1: जी
0: उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है।
0: जी, एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई
1: जी
0: देता। उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज
0: बट
1: होते हैं। जी
0: हाँ, तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सके।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे, तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला, आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है
1: जी
0: और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी

0: वेबसाइट्स हैं, सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा, हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग, उसकी वेबसाइट पर भी हर तरह की जो सामग्री है और हर तरह की जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन डिवीजन, जहां पर किताबों की बिक्री भी होती है, तो यहाँ पर भी आप उस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो सीधे आपके स्कूल या घर पर डिलीवर हो जाएगी।
1: जी
0: मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी अजीत जी, एक बहुत जरूरी जो कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया वो ये कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसको प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी।
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रही, और यदि आपको अच्छी लगी तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए। एक बार फिर से आप सबको हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800-440-5559, और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग।

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers, the Delhi STD code if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवाल इस कार्यक्रम में उसके जवाब हम नहीं दे पाएंगे. चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन.
1: आइए श्रोताओं, एक नजर डालें आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: The benchmark domestic indices decline, Sensex slips nearly 400 points. Nifty settles below 23,800. The global crude oil prices rise and Prime Minister Narendra Modi to address the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai tomorrow.
1: Pramukh gharelu share suchakankon mein giravat, Sensex lagbhag 400 ank phisla, Nifty 23,800 ke niche band hua. Duniya bhar mein kacche tel ke daam badhe aur Pradhan Mantri Narendra Modi kal Mumbai mein ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करेंगे.

0: Before we proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों पर बात करेंगे, आपके सवाल के जवाब भी हमारे हमारे एक्सपर्ट देंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। श्रोताओं, आज प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आधा प्रतिशत फिसले। सेंसेक्स 383 अंक लुढ़ककर 76,133 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 अंक लुढ़ककर 23,779 पर स्थिर हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिडकैप 100 सूचकांक आधा प्रतिशत गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया। इससे पहले कच्चे तेल के ऊंचे दाम और पश्चिम एशिया में पुनः तनाव बढ़ने से बाजार मामूली गिरावट के साथ खुले। सत्र के दौरान दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांक दबाव में रहे, क्योंकि सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिकवाली दर्ज की गई।
0: The benchmark domestic equity indices ended 0.5% lower today. The Sensex declined 383 points to close at 76,133, while the Nifty shed 119 points to settle at 23,779. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index fell 0.5%, while the Small-Cap 100 index ended largely unchanged. Earlier, the markets opened marginally down amid elevated crude oil prices and renewed hostilities in West Asia. Both benchmark indices remained under pressure throughout the session as a broad-based sell-off was witnessed across sectors.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस 3.8%, टेक महिंद्रा 2% और टाटा स्टील 1.8% नीचे आए। वहीं लार्सन एंड टूब्रो और भारतीय एयरटेल में आधे प्रतिशत से अधिक, मारुति में आधा प्रतिशत और पावर ग्रिड के शेयर भी लगभग आधे प्रतिशत बढ़े।
0: And in the sectoral indices, in the Bombay Stock Exchange, 23 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, focused IT lost 2.2%, IT decreased 2.1%, and realty as well as insurance dropped 1.4%. In contrast, telecommunication rose 1.6%, healthcare added 0.7%, and hospitals gained 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,571 companies declined, 1,925 advanced, and 233 remained unchanged.
1: और अब जानेंगे रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में अपरिवर्तित रूप से 94.49 पर बंद हुआ। इसी के साथ कोलकाता से पहली कॉल हम ले रहे हैं, इनका नाम है अरिजीत। अरिजीत, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू मार्केट मुद्रा एंड शरद जी, वेरी बिग फैन।
3: गुड इवनिंग
2: सर, मेरा दो सवाल है आपसे
3: जी।
2: पहला तो ये है कि प्रोविडेंट फंड का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है अभी करेंटली, और पहले और सेकंड मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरा एक प्रोविडेंट फंड और एक शेयर का एक बात है, तो वो दे आर इन द प्रोसेस, मगर जो लोग डील करे कर रहे थे वो लोग बोल रहे कि मेरा कोई एल्स, मेरे फैमिली में कोई जिंदा नहीं है, तो मेरा कोई नॉमिनी नहीं है। उन लोग अगर नॉमिनी का नाम मैं नहीं डालूं तो वो गवर्नमेंट से वो पैसा रिलीज नहीं करेंगे, क्या ये सच है या झूठ?
3: देखिए अरिजीत, अगर आप पहले आपका दूसरा वाला सवाल लेते हैं, अगर नॉमिनी का नाम नहीं है तो इसमें फिर प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि आपको कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट फिर लेना पड़ता है, और उस कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके उसके आधार पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो बेहतर तो यही है कि आप नॉमिनी रखिए, या फिर जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का जो इंटरनल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का आपको ध्यान रखना चाहते हैं और लिखना चाहिए। और दूसरा आपका पहला सवाल पीएफ का इंटरेस्ट रेट तो मेरे ख्याल सभी लोग जानते हैं, आई थिंक इट इज़ अबाउट 7. पीपीएफ का 7.1 है, पर पीएफ का शायद ये पूछ रहे हैं, पीएफ का 8.25 के आसपास है। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, आप ये शायद प्रोविडेंट फंड का जानना चाहते थे, 8.25 के आसपास है। पर आप, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं वहाँ संपर्क करें, क्योंकि कई दफ़े क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पोस्थ्यूमस प्रोसेस अलग होते हैं, बाकी जो लीगल प्रोसेस है वो या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके होता है या फिर आप नॉमिनी के थ्रू उसको ले सकते हैं।
0: राइट, टॉकिंग ऑफ द मार्केट्स टुडे शरद जी,

0: what we are witnessing over the past few sessions, of course, is not surprising, though, but still there is some element, some factor of concern as well. How do you visualize this? How do you perceive this?
1: Well, I think, Nishit, the markets are looking right now more outwards. If markets look internally to the country, we had 7.8% GDP. Mm. We had all the four cylinders of the economy, the private consumption, government expenditure,
2: right.
1: Private investments, exports, they're all shining. But somehow I think I was talking to another platform today, and I said the markets seem to be looking more outwards, mm-hmm. because the markets look at West Asia, crude oil prices, aggression between Iran and US, bond yields, dollar index. I think those are the factors which are sort of overshadowing our internal growth at this point of time. So I'm sure, in fact, through Market Mantra today, if I'm sure there are a lot of market operators who listen to this program, I would like to request to please start looking inwards. Look at what is happening within the country. They seem to be becoming more international, but in the process, they are looking at all the negative things which are coming out. Obviously, it does depress the sentiment, but within our country, we are doing fairly okay. So I think the day we start looking inwards, you will find the market, and market today broke a very important technical level of 23,850 on the technical charts. This becomes a matter of concern because there could be further slide, I hope. And the crude oil prices, look at them. They were getting closer and closer to 100. The Indian basket of crude is beyond 100 now. In fact, we are heading for a time where the oil marketing companies may have to, at some point of time, take a call to invoke another rise in petrol and diesel prices. So those concerns are, I think, counting on the minds.
2: बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई.
0: एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द ब्लैक शीप इन द लॉट मिस्टर ट्रंप एज वेल.
1: ओह यस ही इज ऑलवेज इन द न्यूज़.
2: आगे बढ़ते हैं और अगली कॉल लेते हैं. ये है मुंबई से रत्नाकर. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो, गुड इवनिंग मैडम. मेरा सवाल है कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है
1: जी,
3: उसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर के लिए, समझो कॉमन मैन को उसमें एंट्री करना है, तो कैसे कर सकते हैं और वो डिजिटली प्लेटफॉर्म क्या है उसका और उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़े बताइए. और दूसरा मेरा सवाल है कि ये जो अभी एक न्यूज आई थी कि जीडीपी रेट अपना बढ़ने वाला है 7 पॉइंट और कुछ, तो उसका कॉमन मैन के ऊपर, नहीं तो ये जो एफएमसीजी सेक्टर है, नहीं तो खुदरा बाजार है, उसमें उसका क्या परिणाम हो सकता है?
1: ओके, चलिए. दोनों सवाल रत्नाकर जी के बहुत अच्छे हैं. आज बहुत दिनों बाद इनसे बात करने का मौका मिला. फॉरेक्स ट्रेडिंग, रत्नाकर जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि हम यहाँ निजी प्लेटफॉर्म्स का नाम तो नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा. पर अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, पर मैं आपको एक तरीके से सतर्क जरूर करना चाहता हूं कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो भी बहुत वॉलेटाइल ट्रेडिंग होती है. आप विभिन्न करेंसीज को आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि 15 दिन बाद डॉलर बढ़ जाएगा, यूरो बढ़ जाएगा, येन बढ़ जाएगा, ब्रिटिश पाउंड बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी आप करते हैं. तो थोड़ा सा जोखिम भरा काम है, क्योंकि इसमें बहुत शार्प मूवमेंट्स होते हैं और बहुत तेज़ी से मूवमेंट होते हैं और 24 घंटे होती है ये. तो आप तो रात को सो रहे होते हैं, मैं उम्मीद तो यही करता हूँ. तो जब आप सो रहे होंगे और रात को उस समय मान लीजिए कीमत जो आप तलाश रहे हैं वो कीमत उस समय आई, आप कैसे उसमें से निकल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी. तो उसमें बहुत ही एक्टिव और 24 घंटे की मॉनिटरिंग उसमें चाहिए होती है. और दूसरा आपने पूछा जीडीपी का 7.8% का कॉमन मैन पे. जीडीपी का देखिए रत्नाकर जी, उसका इम्पैक्ट लगभग सभी सेक्टर्स पर पड़ता है, और चाहे एफएमसीजी हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, क्योंकि जीडीपी जब बढ़ती है तो वो ओवरऑल बढ़ती है. वो ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर बढ़ता है, हर सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट अलग अलग किस्म का होता है. तो इसलिए संक्षेप में तो मैं यही बता सकता हूँ. बाकी आपने जो सवाल पूछा उसका बहुत विस्तृत जवाब है और बहुत लंबा डिस्कशन मांगता है. मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे कि दो लोग और क्यों में हैं. तो
2: बिल्कुल शरद जी, क्योंकि समय की परिधि है और भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं. तो दिल्ली से प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो
2: जी.
1: जी प्रकाश जी, बताइए.
4: हाँ जी, मार्केट मंत्र टीम पे नमस्कार.
1: नमस्कार
4: शरद जी को भी. नमस्कार सर.
1: बिल्कुल नमस्कार
4: सर. मेरा एक छोटा सा सवाल है
1: जी,
4: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है
1: जी,
4: क्या वो नेग्लिजिबल भी हो
1: जी,
4: तो भी क्या उसके लिए ITR2 भरना पड़ता है? क्योंकि अगर कोई मैं SIP कर रहा हूँ, जो इंस्टॉलमेंट एक साल के कम अवधि की है वो मैं रिडीम

0: का देता हूँ, तो क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जरूरी है कि आईटीआर 2 भरा जाए?
1: नियम तो यही है प्रकाश जी के, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको आईटीआर 2 भरना चाहिए। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और एक मकान हो और 50 लाख से कम आए हो तो आप जो सरल फॉर्म है फॉर्म 1, बाकी नियम तो यही है। पर प्रकाश जी आपके, मुझे लग रहा है आपका कंसर्न शायद इसलिए है, और मैं प्राची और निशित को भी बताऊं, क्योंकि ITR 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। पर आपको सच बताऊं तो तभी तक कॉम्प्लिकेटेड है जब तक आपने उसको खोल के नहीं देखा। बहुत बहुत प्रोग्राम्ड है, हर चीज़ का नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आगे क्या करना है ये लिखा हुआ है, उसको इतना सिस्टमेटिक बना दिया गया है। तो प्रकाश जी घबराइए नहीं, आप ITR 2 भरिए और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई परेशानी आती है तो आप अगले कार्यक्रम में हमसे दोबारा यहाँ मार्केट मंत्रा में जुड़ के कभी भी पूछ सकते हैं।
2: जरूर, दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, अपना सवाल।
3: हाँ नमस्कार सर, देखो कोहली सर से मेरा प्रश्न सर ये है सर
1: जी, जी
3: कि 2025 फर्स्ट क्वार्टर में हमारी GDP 6.9% थी सर
1: जी,
3: और 2026-27 में अभी हम पहले तिमाही में 7.8 पे आ गए हैं
1: जी।
3: तो मैं सर यही आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन से की फैक्टर, कौन से मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, या फिर IIP का डेटा बढ़ा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर इतने तेजी से बढ़े हैं ताकि हम 6.9 से 7.8 आए? हालांकि अच्छी चीज है, गुड है। और सर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ा सवाल है सर
1: जी।
3: तो मेरा शंका ये है सर कि जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बड़ी अच्छी चीज है कि कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री हमारा सामान दूसरे देश में, दूसरे सामान का देश हमारे देश में आ जाएंगे, हमारी पहुंच बढ़ेगी। लेकिन सर मुझे ये भी डर लगता है कि हम जिन देशों से आयात निर्यात कर रहे थे तो इससे ट्रेड बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है? जैसे मान लो हम 100 रुपए की चीज एक्सपोर्ट करते हैं सर, तो हम टैक्स रेवेन्यू हमारे 20% के हिसाब से 20 रुपए बनता है मान लीजिए, और हम उनसे आयात करते हैं 50 रुपया का, तो उनको हम 20% अगर हम टैक्स देते हैं 10 रुपया का टैक्स देते हैं, ओवरऑल में हमें 10 रुपया नेट प्रॉफिट में आता है, तो ये ट्रेड बैलेंस गड़बड़ तो नहीं हो सकता सर? धन्यवाद सर।
1: चलिए, इनका पहला सवाल GDP से संबंधित है, अभी पिछले श्रोता में भी शायद उन्होंने रत्नाकर जी थे, उन्होंने ही पूछा था। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब अमित देखा जाता है इसमें। हमारा जो जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बढ़ा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने फायर किया है वो सिलेंडर भी बढ़ा है, हमारा सर्विसेज सेक्टर भी बढ़ा है, सबकी परसेंटेजेस हैं जो बढ़ा है। उसके अलावा 4 सिलेंडर्स की मैंने बात करी थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट केपेक्स, कंजम्पशन हमारी बढ़ी है, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी हमारे 10% बढ़े हैं। तो चारों इंजन्स ने फायर किया। और मैं यहाँ पर प्राची और निशित की इजाजत से ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे कि 7.8 बढ़ी है तो फील गुड फैक्टर नहीं है। तो आप अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो उनके नंबर्स को हमें देखना चाहिए, और भारत जैसी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में हर व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि 7.8% मेरी जेब में आया कि नहीं आया, जबकि ऐसे नहीं होता। ये अभी एक क्वार्टर की है, कालांतर में जब लगातार तेज बढ़ती है तो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलता है। इनका दूसरा सवाल FTA से था, कोई ट्रेड बैलेंस नहीं बिगड़ेगा हमारा अमित, इससे तो उल्टा सुधरेगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तो हमारा कम होता है क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट तो हमें जितना जरूरत है उतना करेंगे, पर हमारा सामान यहां से $860 बिलियन का हम साल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसकी उसकी गिनती बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और भारतीय MSMEs के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। आप डर दिमाग से निकाल दीजिए अमित, आपके मन में आपने कहा कोई डर है, कोई डर नहीं है, तो प्रशंसा की बात है, तारीफ की बात है, खुश होने की बात है।
2: दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है वत्सराज। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार, नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम।
2: नमस्कार
4: कोहली जी को प्रणाम।
1: प्रणाम।
4: सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा शरद कोहली जी को, क्योंकि जितनी सरल भाषा में ये सारी चीज हमें बताते हैं वो बिल्कुल खाने में बैठ जाती है।
1: धन्यवाद। सवाल पूछिए।
4: मैं सर आपकी एक सहमति चाहता हूँ, पिछले आपके सेशन में एक क्वेश्चन आया था
1: जी,
4: और उसका आपने आंसर किया था। एक क्वेश्चन था कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक LTCG या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आदमी को अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है
1: जी।
4: तो मैं सहमति ये चाहता हूँ कि मिनिमम क्या इतना बुक कर लेना चाहिए जितना गवर्नमेंट हमें रिबेट देती है, 1 लाख या 1.25 लाख के करीब जो रिबेट देती है उतना तो मिनिमम बुक कर लेना चाहिए, क्या मैं इस मामले में सही हूँ?
1: वत्सराज जी, ये इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं जो आप कह रहे हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो 1,25,000 का इक्विटी पे हमको छूट मिलती है, पहले सेक्शन 112A उसको कहते थे, जो पुराने एक्ट में अभी लोगों के मुंह पे वही चढ़ा हुआ है, तो मैं नए सेक्शंस अभी नहीं बोल रहा हूँ, तो कर लेना चाहिए। पर इसमें खाली टैक्स वत्सराज जी एक कंसिडरेशन नहीं है, मैंने जो बताया था क्योंकि मार्केट जिस प्रकार से इस समय बिहेव कर रहा है, हो सकता है कोई वेस्ट एशिया से अभी जो खबरें आ रही हैं शायद

0: और मामला बिगड़ जाए, क्रूड ऑयल की कीमतें 100 के आसपास जा रही हैं, तो टैक्स तो एक मैटर होता है। और मैं समझता हूँ आप जो बात कह रहे हैं वो सामान्य परिस्थिति में होता है कि आपने टैक्स हार्वेस्टिंग कर ली, कि आपने बुक कर लिया और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया। पर इस समय अगर प्रॉफिट अच्छा है, ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है वत्सराज जी आपका, कि कितना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा, अलग होगा। पर मैं ये मानता हूँ प्रॉफिट इन द बैंक इज़ बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। मुझे लग रहा है अगर ऐसे वक्त में मुनाफा है तो बुक करके चलना चाहिए। इस समय 1,25,000 टैक्स को आप सेकेंडरी कंसिडरेशन रखिए और प्रॉफिट को आप मुख्य रखिए। मुख्य और गौण कहते हैं अगर हिंदी में, मेरी हिंदी अगर मैं ठीक मुझे बता रही है, तो मुख्य रखिए आप प्रॉफिट को, टैक्स को गौण रखिए, पर 1,25,000 अगर हो रहा है तो अच्छी बात है।
1: आइए जानते हैं क्या है अगला सवाल। नोएडा से हमारे साथ विनय कुमार जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे मार्केट मंत्र टीम का अभिनंदन करता हूँ।
0: धन्यवाद।
2: शरद कोहली साहब का मैं भी एक फैन हूँ।
0: My pleasure,
2: sir. मेरा प्रश्न आज ये है कि अभी पूरी शेयर मार्केट में काफी अनिश्चितता है और जी. आज काफी बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल भी 23,850 का टूट गया है
0: जी.
2: तो इस समय में रिटेल इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सर?
0: बहुत अच्छा सवाल है विनय। देखिए, मार्केट के बारे में मेरा नज़रिया अभी तक जो रहता था, प्राची निशित जानते हैं, मैं हमेशा ये कहता था कि मार्केट में आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। थोड़ा सा ये जो हाल में डेवलपमेंट्स हुए इसमें मेरे नज़रिए में मैंने समय अनुसार बदलाव किया है और मैं आज इनकी इजाज़त से वो बदलाव बताना चाहूँगा। बदलाव ये है कि मुझे यहाँ से मार्केट के लिए थोड़ा सा आगे वाले कुछ समय टफ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो भू राजनीतिक परिस्थितियाँ बन रही हैं, जियो पोलिटिकल जिसको कहते हैं, और भू आर्थिक परिस्थितियां जो बन रही है जिसको जियो इकोनॉमिक कहते हैं, वो परिस्थितियां बहुत अनुकूल मुझे यहां से नहीं नजर आ रही हैं। रशिया नेटो में टेंशन है, ईरान इसराइल कभी खत्म ही नहीं होने में आ रहा है, 6 महीने से ऊपर हो गए, 4.5 साल रशिया यूक्रेन को हो गए। तो मुझे लग रहा है विनय, यहां पर रिटेल निवेशकों को जो बहुत अच्छे वैल्यूएटेड शेयर्स हैं, जहां एक्स्ट्रॉर्डनरी वैल्यूएशंस हैं, उसमें तो आप उसको लेके रख सकते हैं। पर ज्यादातर कभी कभी क्या होता है, मैं हालांकि ये कहने में थोड़ा संकोच कर रहा हूं, कभी कभी ना इन्वेस्ट करना भी विनय एक स्ट्रैटेजी होती है। निवेश करना तो स्ट्रैटेजी होती है, पर कभी कभी दूर बैठ के और तमाशा देखना भी एक स्ट्रैटेजी होती है, कि आप दूर बैठ के ऑब्जर्व करिए। तमाशा शब्द मैं एक हल्के अंदाज में, मतलब आप उसको ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा मार्केट का फैब्रिक जब सुधरेगा अभिनय, तब आप उसमें एंटर करिएगा, क्योंकि अभी हमें मार्केट का यहाँ से बॉटम नहीं मालूम है। और ये जो मैंने बात करी ये सभी श्रोताओं के लिए है। अब कोई कहेगा कि कोहली साहब तो पहले कहते थे कि भाई आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, 5 साल 10 साल बने रहिए, पर अब परिस्थितियाँ जिस हिसाब से बदलती हैं आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। मैं तो निवेश के लिए बात कहता हूँ कि आपको हर 3 महीने में अब रिव्यू करने का वक्त आ गया है। तो इसलिए विनय, मैं उम्मीद करता हूँ आपको संदेश मिल गया होगा और आप उसके अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं। हालांकि निवेश की सलाह आपको अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेने चाहिए, और जो शुरू में डिस्क्लेमर और आखिर में डिस्क्लेमर पढ़ा जाता है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। श्रोताओं, एशिया के शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5% से अधिक बढ़ा, जबकि जापान के निकेई सूचकांक में 2% से अधिक वृद्धि हुई।
3: शरद जी, हाउ डू वी सी दिस एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बीइंग इंसुलेटेड टुडे व्हेन कंपेयर्ड टू द यूरोपियन मार्केट? Kospi 4.6, Japan Nikkei 2.1% up.
0: Well, we were very keenly observing Kospi since morning, and we found Hynix and Samsung, they were doing great. So I think there was excitement which was technology driven, and in the Nikkei we observed SoftBank taking the lead. So I think there were 2-3 companies. It was AI driven, it was tech driven, it was chip demand, semiconductor demand, which drove these markets contrary to the global sentiment. Also, we should not forget, I think the American markets are closed today because of the labor day.
1: Right.
0: So they had their day where they could think independently without taking cues. I was joking at my office, you know, with our stock market team, that today, you know, the cat is away and the mouse will play. You know, no cues from America, so you just do whatever you want to for a change. Otherwise, the markets normally follow. और मैं तो मजाक में कई बार कहता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि करवा चौथ होता है ना हमारे यहाँ, तो उसका चांद निकलता है तो अर्क देख के पानी पिया जाता है। ऐसा लगता है हमारी मार्केट सुबह चांद निकलने के इंतजार, अमेरिकन मार्केट कब खुले तो हम पानी पिए, इस तरीके का माहौल मुझे दिखाई दे रहा। तो आज तो कोई दिक्कत नहीं थी।
1: बेहतरीन आपने उपमा दिया है। और गाजियाबाद से हमारे साथ इसी के साथ मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, और कोहली जी को भी बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार मनीष।
4: सर, अभी आपको सुन रहा था, आपने एक बड़ी अच्छी सी बात बताई, बता रहे थे कि कभी कभी ना नहीं इन्वेस्ट करना, बेचना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। आई थिंक ये रिटेल के लिए आपने

0: रिटेल इन्वेस्टर को माइंड में रख के बोला होगा, लेकिन उनके लिए जो एक एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड पे रेगुलर कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी क्या अप्लीकेबल होगी? दे शुड स्टॉप एसआईपीज और वॉच, और दे शुड कंटिन्यू एज दे आर डूइंग? मतलब बेसिकली अ गुड अमाउंट ऑफ आर सेविंग्स आर गोइंग इन एज ए एसआईपी, तो अभी का जो एज ए मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से तो जा रहा है, बिकॉज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एफआईएस जिस तरह से वो पैसे निकाल रहे हैं आ रहे हैं, बट जो लोकल जो है उनकी तो एसआईपी ठीक ठाक आ रही है, तो एज ए एज एज ए मिडिल क्लास मैं समझना चाहूँ क्या स्ट्रेटजी उनके लिए भी है या दे शुड?
1: जी जी जी, देखिए देखिए मनीष, अगर तो आपकी एसआईपी जो आपने म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, अगर वो एनएवी अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है, तो फिर मैंने जो अभी पहले बोला था वो आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और कुछ समय के लिए अगर आप रोक भी देंगे तो कोई मुझे इतना इसमें खराबी नहीं दिखाई देती है। पर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, एनएवी आपकी इस टाइम बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर प्रॉफिट हो रहा है। मेन बात जो मैं कहना चाहता था प्राची और निशित, कि प्रॉफिट हो रहा है तो इस समय थोड़ा सा बुक कर लीजिए। और अगर आपकी एनएवी, अब ये मनीष मुझे नहीं पता आप कौन से फंड में हैं, कितनी एनएवी है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा। आपकी बात का बहुत सटीक उत्तर तो तब दिया जा सकता है, पर अब तक जो मैंने बोला है आप सुन रहे थे, मैंने आपकी बातों से लगा, उसमें से आप अंदाज निकाल सकते हैं।
2: मथुरा से हमारे साथ कुंज बिहारी जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये अपना गोल्ड कौन सा समय ठीक महसूस करें, जैसे आपका उतार चढ़ाव चल रहा है, और दूसरा सवाल शेयर मार्केट के अलावा और कोई अच्छी जगह है जहां हम सेफ अपना इन्वेस्ट करें, और तीसरी एक छोटी सी बात अपने कोली सर से है, ये पूछना है इनसे कि अगर ईरान अमेरिका का युद्ध खत्म हो जाता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो जाता है, इसमें इन दोनों चारों पार्टियों को किसको क्या बेनिफिट मिलेगा इतना बर्बादी होने के बाद?
1: चलिए, गोल्ड का आपने कहा, गोल्ड का तो मुझे भविष्य उज्जवल नज़र आता है, क्योंकि आपने तीन पूछे हैं तो मुझे छोटे छोटे जवाब देने पड़ेंगे। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में गोल्ड बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेंगे। शेयर मार्केट के अलावा आपने पूछा और कहाँ, तो ऐसे समय में जब निवेश करना हो तो आप जो फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, आरबीआई के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तब तक के लिए निवेशक एक तरह से रिसेस ले सकते हैं। रिसेस होती थी ना जब स्कूल में हम छुट्टी हो जाती थी, कुछ टाइम के लिए पढ़ाई बंद हो जाती थी, तो आप एक रिसेस के तौर पे इन पे ले सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है। दूसरा, इन्होंने पूछा जब युद्ध खत्म हो जाएगा, तो आपके मुंह में पहले तो घी शक्कर, अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है और फिर क्या आपस में ये गले मिल लेंगे? अब तो मैं यही कहूंगा कि अगर खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुंज बिहारी जी, मुझे यहां से कुछ बहुत ज्यादा अभी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। काश आपकी बात सत्य हो, आप पहले बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो कह रहे थे कि ये लोग आपस में गले मिल जाएंगे, पर अभी मुझे कोई ऐसा आसार तो नहीं नजर आ रहे। निश्चित और प्राची, मेरे ख्याल
2: में कहने का तात्पर्य ये था कि अगर इस तरीके की जो युद्ध चल रहे हैं वो अगर सेटल हो जाते हैं तो किसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये किस चीज, ये कौन से नाक की लड़ाई,
1: क्या खोया क्या पाया बाद में? देखिए, मुझे लगता है युद्ध में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, केवल मानवता हारती है, नुकसान जानमाल का नुकसान होता है। तो एक लाइन में जवाब दूं तो यही है।
4: Right, and on to some other stories. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai tomorrow evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is Potential to Impact Agentic AI, Tokenization, Quantum, Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance. According to an official press release, GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. The discussions will focus on how AI, programmable finance, quantum technologies and other critical and emerging technologies can create trusted, inclusive and measurable outcomes for citizens, enterprises and economies globally. Since 2020, Global FinTech Fest has emerged as a leadership platform bringing together policymakers, regulators, central banks, financial institutions, fintechs, technology companies, investors, academia, and other global stakeholders to discuss and shape the future of finance. The 7th edition will run till 11th of September 2026 in Mumbai.
2: Delhi se Deepak hamare saath jud rahe hain. Deepak ji, sanshipt mein apna sawal poochiye please.
5: Namaskar ma'am.
2: Ji.
5: मेरा कुछ नहीं था, जैसे मार्केट डाउन होती है तो लिक्विड फंड के जो इंटरेस्ट है वो भी डाउन होता है या वो सेम चलता रहता है?
1: दीपक, लिक्विड फंड्स के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो उस पर रिटर्न होता है, वो वेरी करता रहता है। वो डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई पे, कि कितने लोग लिक्विड फंड्स में, जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए जल्दी से मैं बता दूं, लिक्विड फंड्स होते हैं जो 2-3 दिन के लिए आप पैसा रखते हैं, उसमें आपको अमूमन मैंने देखा है करीब 6 से 7.5%, डिपेंडिंग

0: डिमांड डिमांड सप्लाई इतना रिटर्न आता है तो वो ऊपर नीचे होता रहता है दीपक उसमें, पर वो रिलेटिवली सेफ माने जाते हैं। और बहुत ही छोटे टर्म के लिए जब किसी को पैसा रखना हो तो बजाय इसके कि सेविंग्स में पड़ा है, तो बहुत लोग इसमें इसको खेल को करते हैं और बड़ा बड़ा कामयाब तरीके से करते हैं।
1: Moving on to crude, the global crude oil prices climbed to near six-week high as renewed strikes over the weekend in the Strait of Hormuz heightened concerns over supply disruptions. Brent crude was trading 1.1% up at $97.37 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 0.8% up at $92.20 per barrel when reports last came in.
2: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत आज लगभग 1.5% फिसलकर 152,703 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत 1.5% से अधिक बढ़कर 231,650 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: Thank you so very much, Sharadji. And before we close, a reminder of the headlines once again. The benchmark domestic indices decline. Sensex slips nearly 400 points. Nifty settles below 23,800. The global crude oil prices rise. And Prime Minister Narendra Modi to address the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai tomorrow. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर साइमन हेक के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में आलू के बेहतर बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, किसानों की समस्याओं के समाधान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा कि आगरा स्थित केंद्र को दुनिया की उन्नत आलू प्रजातियों को भारत लाने और देश की अलग अलग जलवायु के अनुकूल आलू की नई किस्में विकसित करने में मदद करनी चाहिए। इससे आलू किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

0: ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவ்தாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे. वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है. उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे. श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे. इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है. गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया. इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की.
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है. ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है.
1: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की. श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है. रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई. परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई. रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर साइमन हेक के साथ विस्तृत चर्चा की. बैठक में आलू के बेहतर बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, किसानों की समस्याओं के समाधान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए. वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना फिलहाल स्थगित रहेगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं. जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल औपचारिक उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी तथा विधु विनोद चोपड़ा मौजूद रहे. महोत्सव में 40 से अधिक देशों की 130 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी. इसका आयोजन श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू में एक साथ हो रहा है. शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला

0: கேட்ட நிகழ்ச்சி நினைவில் நின்றவை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे. वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है. उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी

0: आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना फिलहाल स्थगित रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पारदर्शी नीतियां, सुशासन और निवेश के अनुकूल माहौल के साथ विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की मजबूत सड़क और रेल संपर्क तथा आधुनिक लॉजिस्टिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कृषि उद्योग, सेवा, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए ताकि वह मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को बेहतर ढंग से दर्शा सकें। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके ठिकानों पर फिर हमला किया गया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी तेल और गैस प्रतिष्ठानों समेत ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की इजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Defense Acquisition Council, DAC, has cleared

मानव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को

0: नागरिकता में बदलना है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों और बैंकिंग क्षेत्र के हित में संवाद और आपसी सहमति के जरिए मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्यनिकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेटेल 7 से 9 सितंबर तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी तथा विनोद चोपड़ा मौजूद रहे। महोत्सव में 40 से अधिक देशों की 130 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसका आयोजन श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू में एक साथ हो रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग की फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की एजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। The Defence Acquisition Council DAC has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
3: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MG.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारुणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिले

28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम बारिश हुई है। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी देश में सबसे अधिक बारिश वाले 5 जिलों में शामिल रहे। भारी बारिश को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिनों के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में करीब 30 से 45 मिनट लगेंगे। प्राधिकरण ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब से जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 6 लेन की एलिवेटेड बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल शिलांग में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें न्यू शिलांग जलापूर्ति योजना की दूसरे चरण, 2 सड़क संपर्क परियोजनाएं, शिलांग सिविल अस्पताल में 30 बिस्तरों वाली आयुष सुविधा और माओखानों में विद्युत उपकेंद्र शामिल है। मणिपुर विधानसभा के 8वें सत्र के अंतिम दिन सदन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3848 करोड़ रुपए से अधिक की 31 अनुपूरक अनुदान मांगे पारित की। गृहमंत्री गोविंद दास ने बताया कि कामजोंग जिले में जले 23 मकानों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का आधार वर्ष 1951 होगा और राज्य सरकार इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाएगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नाहरलागुन में राज्य कृषि सूचना केंद्र सह किसान छात्रावास का उद्घाटन किया। यह केंद्र किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं की जानकारी और ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। भारत को UWW विश्व बेल्ट कुश्ती चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी का प्रस्ताव मिला है। इसमें नागा कुश्ती और अलिश बेल्ट कुश्ती शामिल है। इस संबंध में किर्गिस्तान में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चैंपियनशिप 14 से 19 दिसंबर तक प्रस्तावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण परियोजना पूरी हो जाएगी. अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है.
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में. वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से. उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे. ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे. 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ.
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे. इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे. महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे. सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा. गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया. इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की. इससे पहले

गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। वहीं जेवियर बेटल ने भारत के शांति प्रयासों और संघर्ष प्रभावित देशों के बीच सेतु की भूमिका की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। श्री बेटल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पश्चिमी एशिया के साथ भारत के संबंधों पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने खाड़ी और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों और व्यापार, निवेश तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। कृषि मंत्री

0: की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पश्चिमी एशिया के साथ भारत के संबंधों पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने खाड़ी और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों और व्यापार, निवेश तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर साइमन हेक से मुलाकात की। बैठक में बेहतर आलू बीज, किसानों की समस्याओं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने भारत में उन्नत आलू किस्में लाने और अलग अलग जलवायु के अनुकूल नई किस्में विकसित करने पर बल दिया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल आज से 11 सितंबर तक मेघालय के उमियम में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन में देश के 21 राज्यों और 51 कृषि संस्थानों से 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी और 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में करीब 30 से 45 मिनट लगेंगे। त्योहारों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख खाद्य बाजारों में जांच अभियान तेज कर दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत करीब 2300 किलोग्राम लावारिस खोया, धाप और मक्खन जब्त कर नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। एशियाई खेल 2026 जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होंगे। हालांकि कुछ खेल प्रतियोगिताएं 10 सितंबर से ही शुरू हो जाएंगी। भारत का अभियान 17 सितंबर तक टेक बॉल से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation three important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, WDFC, covering 326 route kilometers developed at a cost of more than 20,700 crore rupees. The Prime Minister will also lay the foundation stone for three railway projects costing more than 9,700 crore rupees. In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is Potential to Impact, Agentic AI, Tokenization, Quantum, Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance. The GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. The Defence Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during the meeting of the Council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh. The Council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, High Mobility Vehicles HMV, Self-Propelled Mechanical Mine Layers MML, Advanced Light Helicopters ALHs, Trawl Tanks and Sarvatra Bridge System for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra Radars, design and development and subsequent procurement of Marine Gas Turbines MGT. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the war-fighting capability. The Greater Noida Industrial Development Authority, GNIDA, has proposed separating freight and passenger movement in Greater Noida and constructing a 105-meter-wide road to up to the Harpur Bypass.